थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषीय समाचार जिउ बेसपाखिना दिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स पिखुद दिलागा द्वादशी ओ त्रयोदशी साउन या लिपाङ्गु सोमबार थौ माध्य अर्थात् पशुपति देगले नाप देनिङ्क मो म भक्त जनपिनगु बोति दुगुदो थौ सोमबापतिक अप्स चौपिन्स मिसापिन्स अप्स कोचाइको नि एख सौरमास कथ साउन या थौ सोमबार बोलबम यात्रा याइपी भक्त जनपी सुन्दरी जले मिक बहनिए मुङ्गु ख उपी थौ हे पशुपति बागमती हगु ल नाप पूजा याइगु नुगु चलन यागुदु थुसी छिदो यात्रीपिन्स बोती कागु नेपाल प्रहरी धागु ख थोए दथुई रसुवा जिल्ला लोकौ हागु सिलो तीर्थे ओना गुनपुनियादि महादेव पूजाइगु व मोल हुइगु नखया त तातया तयारी न्याकुगु धागुदो आ वैगु भदक बारे कतया नखा नीति थन्या होटेल व्यवसायी प्रतीक्षालय चौबी निर्माण नाप्नाप आवास व्यवस्थापन लिसे नसतोष लिसे ची नाप मसला लिसे खाद्य सामग्री ढुवानी याना चुङ्गुदो सिलु वनिगु लपी चुङ्गु होटेल व्यवसायी सङ्घ नाय रेन्जन निमा तामाङ या कथ खन्ती देउराली डिम्सा चन्दनबारी लौरी विनायक जुया सिलु कुण्ड तकया नि न्यागु सिमे अपो होटेल तेस तयारी त चुहाका चुङ्गुदु तीर्थयात्री या त आवास्य असुविधा मोजीमा धाइगु तातया निस सिमे अपो थर्पु टहरा निर्माण जुया चुङ्गुदु थोए दुई लाङताङ राष्ट्रिय निकुञ्ज थपपति कहाँ चबी या प्रबन्ध या त होटेल व्यवसाय या त इनापनाप यागुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल देय या संविधान विविधता एकता या त नालाकया फुक्क समुदाय हकको हित या त सुनिश्चित यागु धैदिगुदु सुनिकगु विश्व आदिवासी दिवस लसता आदिवासी जनजाति आयोग पाखी गोस्वागो गु ज्याजोले वेक्ल छिगु दे बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विश्वस्ता जागु दे जुगु नेतना दिल वेक्ल परापूर्व काल निसे चुना चोपी आदिवासी जनजाति पिनको विशिष्ट मसिका व तजिले झे नेपाया राष्ट्रिय गौरव जुगु नेतना दिल राष्ट्रपति पौडेल राज्य नीति निर्माण व निर्णायक तगिमे आदिवासी जनजातीय अर्थपूर्ण बोतीय सुनिश्चित यागु सरकारी दायित्व जुगु ध्यादिसे लिपाङ्गु तथ्याङ्ग कथ स्थानीय तगिमे आदिवासी जनजातीय प्रतिनिधित्व उत्साहजनक कथ श्री खुगु

पोचेन्ह्या ने आदिवासी जनजाति आज्ञा व्यवस्था यागु नाप खनादिल। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कजी पुष्पकमल दाल प्रचण्ड फुक्क समुदाय न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व व सम्मानपूर्ण बोती जग समावेशी लोकतन्त्र सामाजिक न्याय व सुदृढ राष्ट्र निर्माण न्याय फैगु हेतनादिगु दु विश्व आदिवासी दिवस लसता जारी नादिगु भिन्तुना हसना वेक्ला विविधता या सम्मान व जोल जो अधिकार मधेक राष्ट्रिय एकता बला के मुफैगु हेतनादिल कजी प्रचण्ड जनसङ्घर्ष पाखी वगु समावेशी समानुपातिकले चाहिँ सहभागितामूलक अधिकार या रक्षा या चाहिँ लिङ्गु अधिकार क्यागु सङ्घर्ष त अझ सशक्त देखेमागु थौ या आवश्यकता जुगु नेतनादिल थौ सोकोगु सोनुयङ्क या अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन न्याय तेङ्गुदु। नेपाल आदिवासी पत्रकार महासङ्घ फोनिजो नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबुया मङ्का कथ ज्याजो राष्ट्रिय सभा ग्रहले थौ जुई तेङ्गुदु। तिथि विशेष सम्मेलन सल जुगु पत्रकार दबुया नाय नृपन्दलाल श्रेष्ठ रेडियो नेपाल या त धैदिगु ख। प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेता बालनारायण शाह व रासोपाया सभापति रवि लामिछानी दोथुई मिग नाप्ल्याज्या जुगुदु। प्रधानमन्त्री निवास बालुटरी जुगु नाप्ल्याज्या प्रधानमन्त्री शाह व सभापति लामिछानी दोथी समसायिक क्रान्तिको विशेष सल जुगु ख। सलसम्म पार्टिया वैगु ज्या कार्यनीति रणनीति व सरकार बाले खलबला जुगु थागुदु। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति गगन कुमार थापा सरकार या त भिङ्क व बाँलाक ज्या याके त मु प्रतिपक्ष या भूमिका निर्वाह यागु धैदिगुदो। मिगनिसे केन्द्रीय कार्य समिति या मु ज्या वेक्ल प्रतिपक्ष या भाला धैगु सरकार या त दुग्यङ्क न्यसत या प्याचे नक्सा सरकार या त ज्या याके त कुत या मागु बिचा पोङ्का दिल वैगु चिन्याकगु त मु ज्या निष्पक्ष देखे त न्यौला पिन त हनबना तया सकल या त छप्प छदि यागु जी धका वेक्ल नेतना दिल थौ छताइले मुज्या चुनिगु गोसादु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सरकारी बोती कापी मन्त्रीपिन्त लेपतिक पार्टी केन्द्रीय ज्याकुई वया नागरिकको पार्टी या त नाप तपेङ्क नाप्ल्यागु ज्याजो कोचुगुदु। रासोपा सहमहामन्त्री असीम सामिक विज्ञप्ति पित्ना दिसे सहमन्त्रीको सहनियनित व इमगो सहायत चुए राज्य या ज्या झोले क घात थज्याको ज्याजो हयागु नादिगुदु। ज्याजो कथ छगो कुए या मुनुते गु ख निमागु ज्या धल वेक्मा पित्नादिगु ख। नेपाली काङ्ग्रेस निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देवा थोए वैगु साउन 26 गते नेपाल यहाँ वैगु जुगुदु। जेन्जी आन्दोलन झोले खापा जुम देवा थ जान आर्जु राणा देउवा नाप वास या त विदेशी बुनादिगु ख। देवातिपु विदेशी चुनाचुङ्गु इले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग व नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी मङ्का कथ अनुसन्धान याकुको खसा जिल्ला अदालत जोनेत पौतक जारी यागु ख। उङ्गु जेठे सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेश जारी यासे देउवा या त जोनीगु पौ मछले त उज नाप ब्युगुदु। आदेश प्रक्रियागत त्रुटि जुगु धासे सम्पत्ति शुल्कर मुद्दा या क्षेत्र अधिकार विशेष अदालत या जुगुली जिल्ला अदालत या अनुमति स्वत निष्क्रिय जुगु ख। देउवा टिपु यादकया नेपाल प्रहरी इन्टरपोल पाखे रेड कर्नर नोटिस जारी यागु कुत यागु खसा तबी इन्टरपोल उकिया त अस्वीकार यागु सिदुगुदु। जहाँ थुइगु ग्यासे हाकुकु बजार दिके त गृह मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय नापत जाना ए महानगरदुनी थिति ग्यास डिपोए सादा पोसाके प्रहरी परिचालन जुगुदु। भारत ग्यास आते छुन पङ्ग मुजुसा तबी बजारे हो जुगु धाइगु ख प्या वे ढुङ्गा थते परिचालित जुगु ख। ग्यास सुचकेगु मो थका केनेगु मधु धाइपी अपोदाकया मि पिन्त कारु या त बर्दी मपी पी प्रहरी या त छेला कारु यागु धागु ख। खोपया सुधार ग्रहले वासा याका चोम छम सी गुदु। सिरुटार सिरुबिना गाउँपालिका एक चोङ्गु छगु सुधार गृह वास याका चोम छम मोनु मिग सिगु ख। खोप जिल्ला प्रहरी परिसर या डिएसपी टिप कार्की या कथ पी निद दुम उमेश खड्की सिगु ख। एला लत पाखे तापेका त वा त सुधार गृहले यङ्कुगु ख। उगु घटना लिपा थतिथि वा छेज पिन्छ विरोध प्रश्न यागु ख।

वस्तु नगरपालिका पूर्व नगर प्रमुख किरण सिंह सिनाचुङ अवस्था लुगुदो हुङ्गु सुकुवा निसिम बेपत्ता जुया चुनादी सिंह या सिंह आइतबार छगु गुई मोटरसाइकल लिक लुआगु जिल्ला प्रहरी ज्याकु कपिल वस्तु थागु ख जिल्ला प्रहरी ज्याकु कपिल वस्तु प्रहरी परीक्षक मनोहर भट्ट एकथ प्रहरी सैत्य पुचल मालिक झोले सिंह या सिंह लुआगु खेला चुङ्गु मोटरसाइकल शनिभा हे लुआगु ख मोटरसाइकल लुआ व सिमिया अवस्था सी मधुनिगु ख खुइ न्यादो दुम सिम शुक्रबार हिने थ्यौमथे निता इले कपिल वस्तु गाउँपालका तीन स्थित छे तोता पिहा उङ्गु ख पुर्खा तया थकुगु चोया तगु सम्पदा त डिजिटलाइजेसन थौँ आवश्यकता जुगु ख थागुदो अर्काइभ नेपाल युनेस्को या गोसाले जुगु छगु ज्याजुले नौना दिसे ए महानगरपालिका या कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गल पुर्खा तया थकुगु था सफु बिल पौ ताड पौ सेला पौ थे ज्यागु चोयातोको सम्पदा नुगु पुस्ता नीति उपहार जुगु ख धया दिल अथे युनेस्को या नीति नेपाल प्रतिनिधि यानको टु टोइट चोयातोको सम्पदा संरक्षण यागु छगु संस्था जग दायित्व मुकुसे सखिया दायित्व जुगु नियतना दिल पुर्खा या ज्ञान या त सूचिका दिएको मुकुसे उकिया त सखिया नीति उपलब्ध यागु नीति थजियाको सम्पदा डिजिटलाइजेसन हो लिपान्तर या आवश्यक जुगु ख उपलङ्कना दिल अथे यल महानगरपालिका छ वडा नायो रूपेन्द्र साके पुर्खा या चोयातोको दस्तावेज त के नै मजुदका सूचिका दिएको प्रवृत्ति याना योगको चोयातोको सम्पदा नना उना चुङ्गु ख नियत नादिल म्यानमा या सरकार नजरबन्द दिम आङसाङ सुकिया त तोटे त दक्षिण पूर्वी एसियाली देते गु संस्था आसियान यागु इनापिया त कोठगुदो सन् 2081 सुकिया नेतृत्व दुगु त्याना निसोङ्गु सरकारिया त कोठया सत्ता लाका क्यादुङका आया सरकार आसियान नाप क्वाटुक स्वापु त ब्याके त कुत यनाचुङ्गु ख चे द दुम सुकी राजधानी नेपिता नजरबन्दे चुनाचुङ्गुदो सन् 2081 सत्ता कब्जा लिपा सैन्य शासन विरुद्ध अन सशस्त्र विद्रोह व ल्वापु जुयाचुङ्गुदो इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु गाजा नीति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हव्यादिगो लिपाङ्गो चिन्यागो धलया शान्ति योजना या त इजरायल तपिङको कोठगु धाइदिगुदो वेक्ल हमास ल्वाब टोटुसा जक थपि गाजा लिचिलिगु भेटना दिल थुके हमास पुचल ट्रम्प योजना थपि प्रतिबद्ध जुगु नेतङ्गुदो योजना अमास नाप गाजे दुपी फुक्क पुचल ल्वाब तोटी माग

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

सु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिरी राङ्नी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभाला तिनी लाची साङ्री लोलो लोलो गोर्सोम विधेयक थान्बा मुला चिसाङ्री नोर्ब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसे कर्मचारी सञ्चय कोष चुई छा संशोधन विधेयक 2083 थान्स्युबा मुला चुराङलासिन थिम न्यायथेन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतमसे मेलमिलाप सम्बन्धी सोमछा संशोधन विधेयक 2083 थान्स्युबा मुबा चिसाङ्री ब्योन क्लाङ थेन रोजगार ब्लोन रामजी यादव से बाल श्रम निषेध थेन नियमित लाभा विधेयक 2083 थान्स्युबा मुबा चु गाछा प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङ्री प्रतिपक्षी दललाई सांसदका दिशे काइब्लोन्दा मुर्ला ताम्री पाङबा ताम संसद रि खासी स्पष्ट जवाब रिस्युबा मुबा काइब्लोन्दा प्रतिपक्षी थिएन आलोङबारी काठुई लाबारी थेन आलोचना दा शत्रु आहिन सुधारला रूपरी किनबारी प्रतिपक्षी धल्ला सांसद कादेशे मोइजेन लास्युबा मुला सांसद कादेशे युल्ला हित्री ताबा मोकुन गेरी प्रतिपक्षी धलनोन छ्याम्छ्याम तालासुङबान सरकार दा ज्याबा घ्याम्री बोरबारी सत्ता पक्षला खबरधारी थेन प्रतिपक्षला आलोचना निनोन तोला बिसी सुङबा मुबा सांसद कादेशे रादाङसे चादोबा सेला टाङ्गा लेबा थेन ग्यास आयाङबासे मिनी कादेदा समस्या ताबा ताम सरकार दा थान्बा मुला चुङाछा प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङ तिबा छ्याम प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी श्रम संस्कृति पार्टी थेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीला सांसद कार्य रेसी विरोध लाबा मुबा नोर ब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसे ठिम अनुसार शोभा सम्पत्ति रि नाफा ताबा टाङ्गा सुरक्षा लाभा सरकारला घे हिन्ला बिची सुङबा मुला तिनी नोर ब्लोन खाङ्री निची ग्रेन करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीला मुल्मीका देथेन काठुई लस्युबा धुइरी नोर ब्लोन वाग्लेसे नेपाली दाते बिमा ग्रेन ग्रेन लगानी उद्योग लेना लाभा छार प्रविधि भाबारी मोइजेन लस्युबान सरकार राङ कादेला छ्याम मुला बिसी सुङबा मुबा तिनीला चिसाङ औपचारिक रूप ताबा जेखेन आताना चु सरकार थेन युल सोभारी गे लबन खाबा निजी थुम घुङ्री छार थेन नुप्ला विश्वास मुला बिसी ब्लोन वाग्लेसे सुङबा मुला काइब्लोन बालेन्द्र साहथेन नेपाल रिस्युबा भारतला ग्लेबोन नवीन श्रीवास्तव से रूपतासी लिङमोला स्युबा मुला काइब्लोन थेन ब्लोन सिंह झाङला घेझाङ्री रूप तामा थेनी कादे घुङ्री नेपाल थेन भारत गुङला ब्रेल्बा विकास साझेदारी थेन सहकार्यला ताम्री काठुई ताबा मुला बिसी क्लाइबोन ला प्रेस थेन अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालसे सुङबा मुला चुराङला चिन काइब्लोन बालेन्द्र साहथेन नेपाल डी स्युबा चिनला ग्लेबोन चाङ माओ मिङ से तिनी रूपताची लेङमोला स्युबा मुला सिंहदरबारी मुबा काइब्लोन थेन ब्लोन सेङ झाङला घेझाङ्री रूप तामा थेनी कादे घुङ्री नेपाल थेन चिन गुङला ब्रेल्बाला ताम थेन लोलो थुम्री रो किनबा पिनबा ताम्री काठुई ताबा मुला बिसी विज्ञ दाहालसे सुङबा मुला प्रतिनिधि सभाला स्यार लुइथेन सूचना प्रविधि समिति ह्युलबाङ विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 थोरी काठुई ताबा मुला समितिला तिनीला चिसाङ्री विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यकारी निर्देशक ला नियुक्ति योग्यता गे कर्तव्य थिएन पोला ताम्री काठुई ताबा हिन्ला चिसाङ्री सांसद कादेशे प्रयोगशाला कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति लामा विधेयक रि प्रस्तावला स्यार योग्यता रि जातीय विभेद छुवाछुत आलाबा मिनी तादोबा व्यवस्था थानबारी प्रस्ताव लास्युबा मुबा चिसाङ्री विज्ञान प्रविधि थिएन नव प्रवर्धन ब्लोन महावीर पुन्से दारेमला राकादेरी खाजीबाइनो निकायरी नियुक्ति लामा छार प्रविधि ज्ञान किन्बा भ्योन कादेदा प्राथमिकता पिन्दोला बिसी सुङबा मुला सरकार से विराटनगर जुट मिल दोषी सेङबारी च्याबा गोबा लाबादा गोर्की गेदल शोभा मुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला घेझाङ्री तिनी चिबा चिसाङसे उद्योगला दातेला नोर प्राविधिक थेन ठिमला ताम गोसी दोषी सेङबादा खारङ लसी ज्याबा शोभारी खामला विवा च्याबा गोबारी विज्ञ कादे थान्ची गेदल शोभा निर्णय लाबा मुला
समृद्धिको आधार पूर्ण समावेशी सञ्चार विवाद ताम्दा किन्सी सोमचा जम्बुलिङ आमा गुई पत्रकारिता ह्वाल तिनी हेन्से याम्बुरी तिबा मुला नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिस तेन नेवा पत्रकार राष्ट्रिय धबुसे डिक्सी सेङबा सोमराला ह्वाल ठिम न्याय थेन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतमसे ठोङसेङ लासियुबा मुला ह्वाल्ला ठोङसेङ लासियुबान ब्लोन गौतमसे सीमान्तकृत थेतमाला कायदा युल्बा युल्बारी धोना लाबारी संचार थुम थेन पत्रकार कादेला राङराङला थुम ग्याम रो लातोला बिसे सुङबा मुबा ब्लोन गौतमसे आमासे लोपा ग्वेई ग्याम युल्से लाबा गेला ताम्री मिनिदा छोरङान पिनबारी थेन युल थेन मिनी गुङला ब्रेल्बा ङाम सोबारी पत्रकार कादेसे राङराङला थुम ग्याम रो लाबारी खाम्दोला बिसे सुङबा मुबा वाल्डी ब्लोन गौतमसे आमा ग्वेदा दिम लोफखान थेन राङ राङरी पाङसी झेखेन आछ्यो बाताबासे पत्रकारिता घ्याम्नोन आमा ग्वेदा सोना लाबारी खामला बिसी सुङबा मुला युलुचोहो रामचन्द्र पौडेल ओन्छाङ मुस्लिम आयोगला तिदिङला प्रतिवेदन थान्बा मुला नेपालला युल्ठिमला धारा ग्यार्जा निसे कुचुई भ्ली अनुसार आयोगला गे तेन्बा चोहो मोहम्मद दिन अली से युलुचोहोला घेजाङरी नोरदिङ 2082-83 प्रतिवेदन थान्स्युबा हिन्ला बिसी युलुचोहोला घेजाङसे पाङबा मुला नुप नबल परासिला सुस्तारी ताबा ब्लुम्बा थेन नारायणी गान्धीला काटान रोगदिबारी संघीय थेन प्रदेश सरकार से सेम ओन बामुला गान्धी से थाबा आख्लाबा लिचा लुम्बिनी प्रदेशला ग्रेन ब्लोन चेत नारायण आचार्य राङनोन सुस्ता दोषी च्यासिबान सुस्तादा गान्धी से थाबा ग्याम सोना लाबारी प्रदेश सरकार गम्भीर मुबासे तोबा रो पिनबा बिसी सुङबामुला गान्धी से थाबारी आख्लाबा लिचा संघीय सांसद विक्रम खनाल से समस्या थुम्ना लाबारी संघीय ऊर्जा किन्वेर थेन सिंचाई ब्लोन खाङ थेन ताम तासिन चिबा मुलाबिसी सुङबा मुबा लाना नाम ताइबा लिछा हुल्ला घ्ला घलारी दुई भाल निमा ग्रेन राजमार्ग ला सडक घ्यालम कादे भन्दा ताबा मुला खुरकोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी सिन्धुली सेङबा बिपी राजमार्गरी भाल ढुइसे ग्याम थाबा लिचा जोखिमदा गोसी न्यासेला ढु न्यामा हेन्से सियोला ब्ली न्यामा धोना मोकोन मोटर कादे सेङबारी आपिनबा मुला मकवानपुरला कान्ति लोकपत्री लाना नाम ताइबा लिचा मुन्डी ब्राबा मोटर कादे सेङबारी पिनबा आरे नोजा सडक ग्यालाम्री न्यासेला घाँ घ्यामा हेन्से सियोला घाँ घ्यामा धोना मोटर कादे सेङबारी पिनबा आरे सिन्धुपाल्चोकला अरनिला राजमार्गला भोटे कोशी गाउँपालिका ब्ली जिरो किलोरी ढुइ निमा सडक घ्यालाम भन्दन ताबा मुला भोटे कोशी गाउँपालिका नि कोदारी ला इकुरी निबा ढुइसे मोटर सेङबारी प्रभावित सोबा मुला ओजन गाउँपालिका नि लिपिङरी सडक ग्यालाम भास्तीबा लिछा अरनि राजमार्ग नोन बन्द ताबा मुला रसवाला उत्तर गया गाउँपालिका गा खाल्टेरी त्रिशुली मैलुङ स्याप्रु बेसी सडक ग्यालाम भास्तीबा लिचा होसा ओजा ग्यालाम नोन बन्द ताबा मुला रुकुम नुब्ला आठ बिस्कोट नगरपालिका डु जिरे गाड स्योङ घाम्री भेरी करिडोरला जाजरकोट डोल्पा सडक घण्टानोन दुईसे लामा बन्द ताबा मुला सोलु खुम्बुरी नाम ताइबाला ताइबान लाबा लिछा निबा ढुइसे गोर्नी ओडा गेजाङ दिमखाङ ग्रेन जोखिमरी मुला बिसामा गोर चुई घिक दिम थेमे विस्थापित ताबा मुला जोङला सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका सोम तामा खानी थेन सोताङ गाउँपालिका भ्लिला ओडा गेजाङ दिमखाङ ढुइला ग्रेन जोखिमरी पर्दिबा मुला ढुइसे लामा ओडा गेजाङला संरचना छ्याम गाम्ला बस्तिरिन जोखिम लेबा मुला जोङ विपद व्यवस्थापन समितिला थुतबोन्थेन जोङला सिडिओ कमान सिंह थापा मगरसे सुङबानसार सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका सोमला ओडा गेजाङ दिमखाङ निबा काम्रे शनिबार मुना निबा ढुइसे लामा जोखिम ताबा हिन्ला जोखिम ताबा थुम्री मुबा मिनी कादेदा सतर्क ताबारी थेन ताबारी खाम्बा विपद्दा घोषी सुरक्षित घ्लारी निबारी जोङ विपद व्यवस्थापन समितिसे मैजेन लाबा मुला
दैलेख सदर मुकामरी कान शोभा एलपी ग्यासला समस्या मराङबा लिछा छड्के अनुगमन लाभामुला सदर मुकामरी तिलै रा हेन्से एलपी ग्यासला समस्या मराङबा लिछा स्थानीय प्रशासन से डिलर थेन चुङबा घ्ला कादेरी च्याबा गोबा लाभा हिन्ला दैलेखला सिडिओ आनन्द सारुला गोबाङरी जोङ प्रहरी गेजाङ दैलेखला डिएसपी श्रवण कुमार विश्वकर्मा छ्यामला टोली से सदर मुकामला ग्यास डिलर थेन चुङबा केन्द्ररी च्याबा गोबा लाभा हिन्ला नेपाल औषधि उत्पादक संघ सरकारी मान ग्लुमा सरकारी थिएन निजी राङलान हुल्ला उद्योग गुङ्री लेवा फेवा आलाना निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाला वातावरण सोबारी सरकार दा मोइजेन लाभामुला महासंघला चोहोथेन नेपाल उद्योग छोङ महासंघला कार्यकारी सदस्य थिएन लुइथेन विज्ञान समितिला चोहो विप्लव अधिकारी से सामाजिक सञ्जाल फेसबुक रि तिनी काइब्लोन दा चिट्ठी भृष्युबान सरकारी उद्योग दा जेखेन प्राथमिकता पिनबा ठिम पोबारी मोइजेन लासियुबा मुला धनुशाला मिथिला नगरपालिका ढल्के बरडरी क्रिटिकल केयर थेन ट्रमा सेन्टर सोबारी लुइथेन खाद्य स्वच्छता ब्लोन खाङसे चु नोर दिङदा करोड ढुट टाङ्गा फेबामुला ट्रमा सेन्टर स्यान्दोन ग्लारी लेबा ताम्दा किन्सी तिलै रा हेन्से लानन मिनी ग्याम ढल्के बर्री विरोध प्रदर्शन तासी चिमा ब्लोन खाङसे ढल्के बर्री ट्रमा सेन्टर शोभा बिसी पाङबामुला धनुशाला ढल्के बर्री प्रदेश स्तरीय ट्रमा सेन्टर सोदोला विषाम सिराहाला लाहाण्डी गा बेटला ट्रमा युनिट जेखेन ठोङबा बिसी ब्लोन खाङसे पाङबामुला जाम्बुलिङ सम्पदा सुजिरी मुबा सिङ्गुन्डी तिलाई सरसफाई तिनी लाभामुला चु साउन निचुई भ्रेला कुनु हेन्से सिङ्गुन्डी ताबा लागिकला झात्रादा व्यवस्थित सोबारी लाखाङ गामला थुम्री सरसफाई लाभा हिन्ला स्वयम्भू व्यवस्थापन थेन संरक्षण महासमिति से लाभा होजा सरसफाई घेखोर्दी स्थानीय गिन्धुनला रोरी लाखाङ थेन होजा थुम्ला गामला रिरी सरसफाई लाभा हिन्ला च्यान्चुबान मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला।

ये रेडियो नेपाल है, हफीज खान से उर्दू में खबरें सुनिए। ऐवान नुमाइंदगान के आज के इजलास में मुख्तलिफ तीन बिल पेश किए गए हैं। आज के इजलास में वज़ीर मालियात डॉक्टर सोनी मवागले ने मुलाजमीन प्रोविडेंट फंड से मुतालिक दसवां तरमीमी बिल 2083 पेश किया। बिल पेश करते हुए वज़ीर मालियात वागले ने फंड के 2019 साल के जवाबित नफाज में रहने की बात बताते हुए कहा कि इसमें बरवक्त तरमीम की ज़रूरत के बाइस बिल को पेश किया गया है। उसी तरह वज़ीर कानून इंसाफ और पार्लिमानी उमूर सुबिता गौतम ने मेल मिलाप से मुतालिक दूसरा तरमीमी बिल 2083 पेश किया। बिल पेश करते हुए उन्होंने बताया कि 2068 साल में जारी हुए जवाबित में तरमीम करने और तेज़ी के साथ इंसाफ की फराहमी की गर्ज से बिल पेश किया गया है। उसी तरह इजलास में वज़ीर शबाब और मेहनत और रोज़गार रामजी यादव ने बच्चों की जफाकशी पर पाबंदी और रेगुलेट करने से मुतालिक बिल 2083 पेश किया। बिल पेश करते हुए उन्होंने बताया कि बच्चों को ख़तरनाक कामों में लगाने पर पाबंदी आयद करने, मुरवजा कानून को बाकायदा बनाने और उसे रेगुलेट करने की गर्ज से बिल लाया गया है। कबल अज़ आज के इजलास में भी हिज़्ब इख़्तिलाफ़ पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के ज़रिए सरहद के हवाले से दिए गए मुतनाज़ बयान के बारे में पार्लियामेंट में हाजिर होकर वाज़ेह जवाब देने और अपने बयान की तस्दीक करने का दोबारा मुतालबा किया है। हिज़्ब इख़्तिलाफ़ से नहीं घबराने, बातचीत करने और तनकीदों को दुश्मनी नहीं बल्कि इस्लाह के तौर पर लेने की हिज़्ब इख़्तिलाफ़ पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म से अपील की है। अरकान पार्लियामेंट ने मुल्क के मफाद में होने वाले तमाम कामों में हिज़्ब इख़्तिलाफ़ पार्टी भी साथ रहने का तस्करा करते हुए कहा कि हुकूमत को सही राह पर चलाने के लिए हुक्मरान पार्टी की खबरदारी और हिज़्ब इख़्तिलाफ़ पार्टी की तनकीद दोनों ज़रूरी हैं। अरकान पार्लियामेंट ने रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों की कीमतों में इजाफा और गैस की किल्लत की वजह से शहरियों को चूल्हा जलाने में मसला पेश आने की जानिब भी हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई है। वज़ीर मालियात डॉक्टर सोनी मवागले ने कहा है कि कानून के मुताबिक की गई सरमायाकारी, कमाई गई जायदाद और हासिल करदा नफ़ा की हिफाजत करना हुकूमत की असल जिम्मेदारी है। आज वजारत में टैक्स अदा करने वाली 20 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों के साथ की मशावरत में उन्होंने नेपाल में मजीद बड़ी सरमायाकारी, सनअतों की तोसी, नई पैदावार में लगने और नई टेक्नोलॉजी लाने की अपील करते हुए ये वाज़ह किया कि हुकूमत उनके साथ है। उनका कहना था कि आज का इजलास सिर्फ एक गैर रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि हुकूमत और मुल्की तामीर में कायदाना किरदार अदा कर रहे निजी शोबों के दरमियान किए नए और गहरे एतमाद और अमली शराकत और अज़्म है। वज़ीर क़ानून इंसाफ़ और पार्लिमानी उमूर सुबिता गौतम ने कहा है कि मतरूक बिरादरी की आवाज़ को असल धार में लाने में ज़राए अबलाग और सहाफ़ियों ने मजबूत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। काठमांडू में शुरू हुए मादरी ज़बान में सहाफ़त से मुतालिक बैन अवी कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताही नशस्त में उन्होंने कहा कि माँ के ज़रिए सिखाई गई ज़बान से रियासत के कामों के बारे में आवाम को बाखबर करने और रियासत और आवाम के दरमियान की दूरी को कम करने में सहाफ़ियों ने यकजहत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मादरी ज़बान को घर, स्कूल और अपनी बिरादरी के दरमियान बोलना काफ़ी नहीं होने की वजह से सहाफ़त के ज़रिए मादरी ज़बान बोला जाना ज़रूरी होने की बात कहते हुए वज़ीर गौतम ने इस ख्याल का भी इजहार किया कि तहरीर करने की सूरत में मादरी ज़बान को ज़िंदा रखा जा सकता है। वज़ीर ज़राअत और जंगलात व माहौलियात गीता चौधरी ने कम्युनिटी जंगलों को सब्ज़ मईशत, रोज़गार के मौक़े और मकामी ज़रिया माश के अहम बुनियाद के तौर पर तरक्की देने पर ज़ोर दिया है। कम्युनिटी जंगलात दिन के मौके पर आज काठमांडू वाक़े फितरत तहफ़ुज़ाती कौमी

को बचाने में सूबाई हुकूमत संजीदा होने की बात बताते हुए फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम करने के अज़्म का इजहार किया है। उसी तरह नदी के कटाव में इजाफे के बाद रुकन पार्लियामेंट विक्रम खनाल ने कहा कि इस मसले का हल निकालने के लिए वफाकी वजारत तवानाई आबे वसायल और आपाशी के साथ मुसलसल हम आहंगी की जा रही है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदक कार्यालयमे आइ बैसल बैठक विराटनगर जूट मिलक वर्तमान अवस्था, एहिसँ पहिने भेल निर्णय तथा विभिन्न निकायसँ तैयार कयल गेल अध्ययन प्रतिवेदनके समीक्षा करैत मिल पुनः सञ्चालनके लेल आवश्यक रणनीति तय करबाक उद्देश्यसँ कार्यदल गठन करबाक निर्णय कयल। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदक कार्यालयक सचिव वीरेन्द्र कुमार यादव जानकारी देलनि। बैठक में सचिव यादव के संगे अर्थ सचिव और उद्योग वाणी तथा आपूर्ति मंत्रालय सचिव सहित संबंधित मंत्रालयक अधिकारी तथा सरकार भेल निकायक प्रतिनिधि सब सहभागी छलैत। ओहि अवसर पर जूट मिलक व्यवस्थापन, संचालन के संभावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः संचालन के लिए अपनाओल जा सकय वाला विभिन्न विकल्प के संबंध में छलफल भेल छल। उद्योगक विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानूनी अवस्था, अध्ययनक पुनः सञ्चालनक लेल उपयुक्त विकल्प सिफारिश करबाक विज्ञ सहितक कार्यदल गठन करबाक निर्णय कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक नेपालक विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक व्यवस्था जगेबाक सम्बन्धी विधेयक 2083 के सर्वसम्मतिसँ पारित कयलक अछि। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल एहि विधेयक के सदन के बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करैत पारित भेल घोषणा कयलनि। बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाहक दिशा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ई विधेयक पारित कयल जा कई प्रस्ताव प्रस्तुत कयल गेल छल। बैठक में राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिक प्रतिवेदन सहितक नेपालक विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक व्यवस्था जगबाक संबंधी विधेयक छलफल कयल जा कई प्रस्ताव प्रस्तुत सर्वसम्मति सँ स्वीकृत कयलक अछि। बैठक में प्रधानमंत्री शाहक दिशा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गौतम ई विधेयक छलफल कयल जा कई प्रस्ताव प्रस्तुत कयने छलथि। मंत्री गौतम अनुसंधान करबाक निकाय कोनो एक स्थान में मात्र विषय नहीं भ सब तरहक सूचना प्रधानमंत्री समक्ष पहुँचला पर नीक हेबाक आ प्रधानमंत्री स्वयं देशक समग्र सुरक्षाक अभिरुचि राखल जेबाक कारणे एहन विषय प्रधानमंत्री कार्यालय अंतर्गत रहबा सन बनाओल जेबाक सरकारक धारणा थिक। ओ अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय मात्र नहीं भक सब तरहक अनुसंधान गुप्तचर निकाय द्वारा कयल जेबाक कारणे ई विधेयक प्रधानमंत्री कार्यालय अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान ब्यूरो के राखल खोजल गेल बतौलनि। एहिसँ पहिने छलफल में सांसद लोकनि सृष्टि भट्टराय, ललिता कुमारी, गणेश बहादुर विश्वकर्मा, दीपक कुमार साह, शाहजान खातून, यशोदा कुमारी बराल, साजिदा खातून सिद्दकी भाग लैत अपन धारणा, जिज्ञासा तथा सुझाव रखने छलथि। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैठक एहि साउन 26 गते मंगल दिन 1 बजे बैसत। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक में विभिन्न 3 विधेयक प्रस्तुत कयल गेल अछि। बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले कर्मचारी संचय कोष 10 संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत कयलनि। विधेयक प्रस्तुत करैत ओ कोषक 2019 सालक ऐन कार्यान्वयन में रहल चर्चा करैत समसामयिक संशोधन करबाक लेल आवश्यक भेलाक कारणे ई विधेयक प्रस्तुत कयल जानकारी देलनि। एहि तरह कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम मेल मिलाप संबंधी दोसर संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत कयलनि। ओ विधेयक प्रस्तुत करैत 2068 साल में जारी भेल ऐन के संशोधन करबाक लेल यथाशीघ्र न्याय निरूपण के लेल विधेयक आनल गेल जानकारी करौलनि। बैठक में युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव बाल श्रम निश्चित तथा नियमित करबाक विधेयक 2083 प्रस्तुत कयलनि। विधेयक प्रस्तुत करैत ओ बाल बालिका जोखिमपूर्ण काज में लगेबाक लेल निषेध करबाक, प्रचलित कानून के नियमित आ नियमन करबाक लेल बनाओल जायवला विधेयक के आनल गेल सदन के जानकारी करौलनि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक में सांसद लोकनि समसामयिक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। बैठक के सुनय समय में सांसद विपिन कुमार आचार्य संसदीय सुधार समिति बनाकर संसद के अधिक रचनात्मक बनेबाक लेल ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद विष्णु मायावीक मोल नहीं पैबाक, गैस नहीं पैबाक अवस्था अयलाक कारणे सरकार समस्या समाधान दिस केंद्रित होबाक बात पर जोर देलनि। सांसद शाहजान खातून निजामती आ अन्य कर्मचारीक जकाँ बाल बालिकाक शिक्षक, बाल विकासक लेल शिक्षक आ विद्यालय कर्मचारीक सेहो तलब बढ़ायब मांग कयलनि।
सांसद शोभा खनाल संविधानक धारा 33 में रोजगारी के हक के व्यवस्था कैल गेल चर्चा करैत नेपाल में रोजगारी नहीं पाबिक विदेश में जयबाक अवस्था अंत हेबाक बतौलन। सांसद शिवशंकर यादव सब गोटे सकारात्मक सोच बनाकर आगू बढ़वाक धारणा रखलन। सांसद श्रद्धा कुंवर सांकेतिक भाषा के शब्दकोश विकास करबाक लेल मांग कलन। सांसद श्रीधर पोखरेल बांके बर्दिया लगाते जिला में 2 दशक पहिने सरकार किछ जमीन दक कमैया मुक्त कलाक बावजूदो बेच बिखन के अधिकार नहीं भेला सो समस्या भेला कारणे समाधान करबाक मांग कलन। सांसद श्री राम नेउपा ने शून्य समय में श्रव्य सामग्री सहित विषय रखबाक व्यवस्था मिलेबाक लेल मांग कलन। सांसद संतोष राजवंशी स्थानीयतः मोरंग के विभिन्न पालिका में भूमिहीनक तथ्यांक संकलन के काज नहीं कैल गेलाक कारणे स्थानीयतः जिम्मेवार बनबाक बात बतौलन। सांसद संतोष सुब्बा दुग्ध किसानक बाकी भुगतानी देबाक मांग कलन। सांसद संदीप राणा पालपाक ग्रामीण सड़क में गर्मी में गर्दा आ पानि पड़ल समय में थालक समस्या होइत गेलाक कारणे समाधान करबाक मांग कलन। सांसद सरस्वती लामा गैस अभावक समस्या समाधान करबाक मांग कलन। विद्युतीय चूल्हाक प्रयोग के स्पष्ट नीति सहूलियत देल जेबाक सेहो ओ जोर देलन। सांसद सरिता महतो ऑटिज्म तथा बौद्धिक अपांगता भेल व्यक्ति के लेल प्रत्येक प्रदेश में केंद्र खोलबाक कार्यक्रम सकारात्मक रहल उल्लेख करैत एहि के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन में लऽ जेबाक बात पर जोर देलन। सांसद सागर भूषाल विद्युत सेवा भरपर्दो बनेबाक लेल मांग कलन। सांसद साजिदा खातून सिद्दकी सांसद के सामाजिक संजाल सहित गैर फजत कैल गेल एहन व्यक्ति के कानूनी कार्यवाही के लेल दायरा में अनबाक मांग कलन। सांसद श्रीना श्रेष्ठ भंसार प्रणाली के पारदर्शी बनेबाक मांग कलन। सांसद सीता थपलिया पुष्पलाल मार्गक धादिंग जिला स्थित त्रिपुरा सुंदरी गांव पालिका क्षेत्र में सड़क अस्तोन्नति नहीं भेला सँ यात्री के शास्ति होइत गेल कहैत समस्या समाधान करबाक मांग कलन। सांसद सुजाता तमंग नीति बनबैत काल प्रकृति सँ संबंधित आदिवासी ज्ञान सीपक उपयोग कैल जेबाक बात बतौलन। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संग नेपालक लेल चीनक राजदूत चांग माओमिंग आई शिष्टाचार भेंट कलन अछि। हुनका लोकनि बीच नेपाल चीन संबंध के थप सुदृढ़ बनेबाक विभिन्न क्षेत्र में सहयोग प्रवर्धन एवं विकास साझेदारी के अभिवृद्धि करबाक सहितक विषय में छलफल भेल प्रधानमंत्री प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल जानकारी दलन। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालय में भेल भेंट में प्रधानमंत्री शाह चीन संगक ऐतिहासिक संबंध के और प्रगाढ़ बनबैत साझा हित के क्षेत्र में मिलकर काज कैल जेबाक विषय में जोर दलन। राजदूत माओमिंग प्रधानमंत्री शाह के शुभकामना व्यक्त करैत दू देश बीचक आपसी संबंध आ सहकार के थप सुदृढ़ बनेबाक प्रतिबद्धता जनौलन। इससे पहले आइए प्रधानमंत्री शाह सँ नेपालक लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सेहो भेंट केने छलथि। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव युवा के देश भीतर रोजगारी का अवसर प्राप्त हेबासन सीप विकास रोजगारी कार्यक्रम नेतृत्व विकास उद्यमशीलता प्रवर्धन सन कार्यक्रम संचालन में रहल बतौलन। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में सांसद लोकनिक प्रश्नक उत्तर दैत ओ युवाक सवाल रोजगारी सीप सूचना प्रविधि उद्यमशीलता जलवायु परिवर्तन खेलकूद न प्रवर्तन आ सामाजिक नेतृत्व से जोड़ल गेल बहुआयक विषय रहल प्रश्न कलन। मंत्री यादव मंत्रालय युवा लक्षित कार्यक्रम संचालन कर रहल जानकारी करौलन। राष्ट्रीय युवा परिषदक विषय में सरकार गंभीर रहल चर्चा करैत ओ युवा के हितक संरक्षण संवर्धन करैत आयल बतौलन। परिषद के थप प्रभावकारी तथा युवा के संबंधित विषय में नेतृत्व निकायक रूप में विकास करबा सन राष्ट्रीय युवा परिषद ऐन 2072 के समसामयिक पुनरावलोकन का नया ऐन आना लागल। राष्ट्रीय युवा ऐन मसौदा तैयार भेल ओ जानकारी दलन। युवा के क्षेत्र में विकास भेल नया आयाम नया अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तथा अनुभव के राष्ट्र निर्माण में परिचालन करवासन युवा नीति 2082 आयल मंत्री यादव सुनौलन। प्रतिनिधि सभा का आजुक बैठक में स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता धनसाक मिथिला नगर पालिका के ढलकेवर में क्रिटिकल केयर तथा ट्रॉमा सेंटर निर्माणक लेल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय चालू आर्थिक वर्ष के लिए 6 करोड़ टका रकम विनियोजन कैल जनौलन। ट्रॉमा सेंटर लॉ गेल हल्ला के भर में कहकर विगत किछ दिन सँ विभिन्न पक्ष में ढलकेवर में विरोध प्रदर्शन भ रहल समय में मंत्रालय ढलकेवर में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण होबाक जानकारी देलक। धनसाक ढलकेवर में प्रदेश स्तरीय ट्रॉमा सेंटर के निर्माण हैत आ सिरहा के लहान में 5 सयाक ट्रॉमा यूनिट मात्र स्थापना करबाक मंत्रालय जनाओल
ओ बतौलन। 2077-78 के नीति तथा कार्यक्रम मार्फत धनसाक ढालकेवर में ट्रामा सेंटर स्थापना करबा घोषणा भेलाक बावजूदो वर्तमान सरकार अयलाक बाद बीतल जेठ मास में बैसल मंत्रिपरिषद बैठक क्रिटिकल क्लिनिक तथा ट्रामा सेंटर के लिए जमीन प्राप्ति करबाक निर्णय कयल मंत्रालय जनौलक अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग में होइत गेल दुर्घटना में पड़ि कऽ गंभीर घायल भेनिहार सभक लेल मध्य प्रदेशक सेंटर में पड़य वाला ढलकेवर में तत्काल उपचार के लेल ट्रामा सेंटर स्थापना करबाक निर्णय नेपाल सरकार कयने छल। बारा में प्रहरी भंसार छली कऽ नेपाल आनल सामान सहित एकटा मोटरसाइकिल बरामद कयलक अछि। प्रहरी जिलाक विभिन्न सीमा क्षेत्र में कयल गश्ती के क्रम में लगभग 188,000 टका बराबर के अवैध सामान आ मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कभी गोठ आ प्रहरी चौकी श्रीनगर बरैया सँ परिचालित टोली विभिन्न स्थान में कयल गश्ती के क्रम में भंसार छली के सामान सब बरामद कयलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा ने नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पुरानी व्यवस्था बहाल करने संबंधी विधेयक को किया पारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ भारत और चीन के राजदूतों की अलग अलग हुई भेंट। आपसी हित और सहकार संबंध में हुई चर्चा। और यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तातारस्तान क्षेत्र में 13 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पुरानी व्यवस्था बहाल करने संबंधी विधेयक बहुमत से पारित किया गया। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के अधीन रखना जरूरी है। इसी तरह सदन ने संवैधानिक निकायों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिक सेवा शर्त और सुविधाओं संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को भी बहुमत से मंजूरी दी। सरकार के अनुसार विधेयक का उद्देश्य दोहरी सुविधाओं को रोकना और सरकारी संसाधनों का मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करना है। बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि मेल मिलाप तथा बाल श्रम संबंधित 3 विधेयक भी पेश किए गए। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल श्रावण 26 को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि सरकार ऐतिहासिक और कूटनीतिक महत्व वाले दस्तावेजों के संरक्षण को गंभीरता से लेते हुए काम आगे बढ़ा रही है। प्रतिनिधि सभा में सांसदों के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में मंत्री खनाल ने बताया कि संगठन एवं प्रबंधन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अलग अभिलेख प्रबंधन शाखा का गठन किया गया है और दस्तावेजों के संरक्षण का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों की खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलाइजेशन और सुरक्षित संरक्षण के लिए संबंधित निकायों के बीच समन्वय जारी है। मंत्री खनाल ने बताया कि विक्रम संवत 1816 की संधि और 1950 से जुड़े कुछ दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन संधि के आधिकारिक मूल दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार मित्र देशों और संस्थाओं के सहयोग से नेपाल के हित को केंद्र में रखते हुए उचित समय पर संधियों की समीक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने कहा है कि धनुषा के ढलकेबर में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं रुकेगा। प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सेंटर के निर्माण में समय लगने के कारण फिलहाल लहान स्थित प्रादेशिक अस्पताल में ट्रॉमा यूनिट शुरू की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि लहान की ट्रॉमा यूनिट ढलकेबर सेंटर का विकल्प नहीं बल्कि अंतरिम व्यवस्था है। मंत्री मेहता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दुर्घटना में घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना और इलाज के लिए काठमांडू जाने की मजबूरी खत्म करना है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के सीमा विवाद संबंधी विवादास्पद बयान पर संसद में आकर स्पष्ट जवाब देने और अपनी अभिव्यक्ति सुधारने की मांग दोहराई। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से विपक्ष से संवाद करने और आलोचना को दुश्मनी नहीं बल्कि सुधार के अवसर के रूप में लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश हित के कामों में विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को सही दिशा में रखने के लिए सत्ता पक्ष की निगरानी और विपक्ष की आलोचना दोनों जरूरी है। सांसदों ने सुनसरी के कप्तानगंज में हुई घटना में नेपाली नागरिकों की मौत पर सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। साथ ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और गैस की कमी से आम लोगों को हो रही परेशानी की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री शाह द्वारा गत 17 जेठ को प्रतिनिधि सभा में भारत की भूमि पर भी नेपाल द्वारा अतिक्रमण किए जाने संबंधी बयान दिए जाने के बाद से विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन
2: भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजी।
2: नमस्ते। आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ हजुर।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
3: ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
4: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से नेपाल के लिए भारत और चीन के राजदूतों ने शिष्टाचार भेंट की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई अलग अलग मुलाकातों के दौरान नेपाल के भारत और चीन के साथ संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग, विकास साझेदारी और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री शाह ने दोनों देशों के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओ मिंग ने प्रधानमंत्री शाह को कार्यकाल की सफलता की शुभकामना देते हुए दोनों देशों के साथ संबंध और सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति में राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 पर दफावार चर्चा हुई। बैठक में प्रयोगशाला के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तव्य और अधिकार से जुड़े प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया। सांसदों ने नियुक्ति में शैक्षिक योग्यता के साथ जातीय भेदभाव और छुआछूत न करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में समावेशिता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा। विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री महावीर पुन ने सरकारी निकायों में नई तकनीक में दक्ष युवा पीढ़ी को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने नई पीढ़ी को आकर्षित करने और पिछली पीढ़ी के अनुभव को युवाओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम लाने की बात कही। सरकार ने अपराध से जुड़े प्रमाणों के वैज्ञानिक परीक्षण और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा विधि विज्ञान के शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये विधेयक पेश किया गया है। राष्ट्रीय सभा की विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति ने राष्ट्रीय सदाचार नीति 2083 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को तत्काल सदाचार विधेयक लाने का निर्देश दिया है। समिति की आज हुई बैठक में सभी सरकारी निकायों में आचार संहिता बनाने, स्कूल पाठ्यक्रम में सदाचार शिक्षा शामिल करने और प्रत्येक निकाय में तत्काल फोकल प्वाइंट तय करने का भी निर्देश दिया गया। समिति सदस्यों ने कहा कि सदाचार की शुरुआत सरकार से होनी चाहिए और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने सदाचार को सभी वर्गों और क्षेत्रों में लागू करने तथा जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के आचरण में सुधार पर भी जोर दिया। समिति ने राष्ट्रीय सदाचार नीति 2083 जारी करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। सरकार ने गत 18 आषाढ़ को राष्ट्रीय सदाचार नीति को मंजूरी दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के ततारस्तान क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। रूसी अधिकारियों के अनुसार हमले में 39 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित निजने कामस्क शहर में हुआ यह हमला रूस पर युद्ध शुरू होने के बाद के सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। शहर में कई बड़ी तेल रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल उद्योग हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हमला रात में शुरू हुआ और कई घंटे तक जारी रहा। सोशल मीडिया पर सामने आई अपुष्ट तस्वीरों में धुएं के गुब्बार और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। हमले में किन ठिकानों को निशाना बनाया गया इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रूस ने कहा है कि हमले में औद्योगिक और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेन ने इस हमले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और करीब 20 लोगों की मौत की खबर है। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा के अलावा पड़ोसी देशों वेनेजुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए। लोगों को सुरक्षा के लिए घरों और इमारतों से बाहर निकलना पड़ा। भूकंप का केंद्र बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में सैन होजे डेल पाल्मर के पास बताया गया है। चोको प्रांत की राजधानी क्विबडो में कई लोग घायल हुए हैं और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने भूकंप के बाद आने वाले झटकों की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा ने नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पुरानी व्यवस्था बहाल करने संबंधी विधेयक को किया पारित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ भारत और चीन के राजदूतों की अलग अलग हुई भेंट, आपसी हित और सहकार्य संबंध में हुई चर्चा और यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तातारस्तान क्षेत्र में 13 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र?
6: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
7: *1415# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
8: झण्डु आयुर्वेद,
9: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
8: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
9: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
8: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
9: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01 45 30 418।

अस स्वभाव भल भ्राज हौ कृपालु गुरु चरण शरण गही भयो धन्य जग आज। अर्थात बिना कारण ने जीव उद्धार करने स्वभावले सुशोभित शरणागत रक्षक परम दयामय सद्गुरु भगवान को शरण ग्रहण गरेर म आज धन्य भए। प्रात स्मरणीय गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु को चरण कमल में कोटि कोटि वंदन गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म संदेश को प्रतीक्षा में रहनु भएका आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। आदरणीय श्रोताहरू संसार को लौकिक विद्या दिने शिक्षक को उपकार त हामी कहिले भुल्न सक्दैनौ भने जसले हाम्रो आत्मालाई परमात्मासित साक्षात्कार गराइदिन्छन् त्यस्ता समर्थ महात्मा गुरुको गुण कसरी वर्णन गर्न सकिएला अर्थात् कदापि सकिन्न किनकि यसमा पनि उनीको कृपा शक्तिको साथ चाहिन्छ। अस्तु आउनुहोस् सत्सङ्ग प्रारम्भ गरौँ गुरु महिमा गानबाट।